0: Hey honey, we're just dancing, we're dancing the night away.
1: ये तो अपने कपड़े उतार रही है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सभी नंगे, देखना यार। Come on, Anna! Woo!